0: वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने ये गाना? गाना था वाकई में काफी बेहतरीन और फेडरल हाउसिंग लॉ का असर ट्रायंगल के रियल एस्टेट मार्केट पर नए नियमों का असर दिखाई दे रहा है, जिससे छोटे लोन कम लोन वाले खरीदारों को पुरानी नेबरहुड्स में फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। हाँ, ये नया नियम आ गया है एंड डिटेल में तो इतनी बात मुझे पता नहीं है एक्चुअल में होने क्या वाला है, लेकिन ऐसे पता चला है कि जो कम लोन है ना, छोटे लोन जो है खरीदारों को पुरानी नेबरहुड से फ़ायदा मिलेगा, गारंटर्स एंड ये जो चीज़ें रहती है आई गेस उसके रिलेटेड ये सारी चीज़ें होने वाली है। डिटेल में क्या रहेगा जैसे ही मुझे पता चलता है आई विल लेट यू नो। और कैसे चल रही है आपकी आज की शाम एंड मौसम तो यार आपको पता ही है कैसे चल रहा है। वेल, ख्याल रखिए एंड खुश रहिए। सुनते हैं अगला ये गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा। पक्का देसी पक्का।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने गाना? गाना था वाकई में काफी बेहतरीन और वीकेंड का मजा। खेल प्रेमियों के लिए डरम बुल्स एथलेटिक पार्क में बेसबॉल मैच की नई सीरीज जो है वो शुरू होने वाली है, जिसमें शानदार आतिशबाजी दैट इज फायरवर्क्स भी शामिल होगी। एंड वीकेंड जो है ना आपका सेट होने वाला है, क्योंकि बेसबॉल की मैचेस जो रहती है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। एंड आपकी अगर रुचि है, आपका अगर इंटरेस्ट है बेसबॉल में, तो आप डेफिनेटली ये एंजॉय कर सकते हो। वेल, बहुत दिनों से यार वीकेंड का प्लान तो मैंने भी बनाया नहीं, क्योंकि मेरा इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा है। ड्यू टू दैट मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, और वेदर भी अलर्ट जारी कर दिया है एंड सारी चीज़ें चल रही है। सो अलर्ट जो है उसके हिसाब से भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई डू टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ, एंड वीकेंड में ये एंजॉय तो आप डेफिनेटली कर सकते हो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 4, 101.9 एफएम, 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। That's right. Pump it up.

वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। तो वीकेंड के आपके प्लान प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच रेडियो नायरा एंड निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। आप हमारे रेडियो नायरा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल प्ले स्टोर से या फिर गूगल प्ले स्टोर से। कुछ नहीं करना है आपको, खाली टाइप करना है रेडियो नायरा एंड डाउनलोड कर लेना है हमारा ये ऐप। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सुन सकते हैं हमारे आरजेस के एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज, इन्जॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक। बस शर्त ये है जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वेल, कैसे चल रही है आपकी शाम? क्या प्लान है आज? घर डिनर करने वाले हो या वीकेंड में करने वाले हो या फिर बाहर से कुछ पार्सल लेके जाने वाले हो घर वालों के लिए? क्या प्लानिंग है आपकी? एंड एक सेफ डिस्टेंस रखना है, गाड़ी की स्पीड को मेनटेन करना है और पहली फुर्सत में इन्जॉय करना है ये अगला गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा। पक्का पक्का।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्मला नाइट्स एंड 7 से 10 हमारा ये शो चलता है। मैं यही कह रहा था कि फ्रंटियर आरटीपी में आज से शुरुआत होने वाली है गेम जैम की, एंड जहां पर डेवलपर्स अपनी गेमिंग स्किल का प्रदर्शन करेंगे। ये बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है। अगर आप भी इस तरह के गेम खेलते हैं तो आप इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। एंड बेसबॉल भी है, बेसबॉल की जो मैचेस होने वाली है, उसके बाद फायरवर्क्स है, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं ये वीकेंड में करने के लिए कि ये वीकेंड फुल ऑन बिजी रहने वाला है आपका। और मैं तो प्रीफर करूँगा यार कि मौसम ऐसा है तो बढ़िया अपने घर पे रुको, बढ़िया कुछ घर पे खाना बनाओ एंड 90s की कोई मूवी लगा दो, बस दैट्स इट, एंड फैमिली के साथ मजा करो। इससे प्यारा वीकेंड क्या हो सकता है यार। वेल, वीकेंड की बात निकली तो वाइब थोड़ी बनाता हूँ एंड सुनाता हूँ आपको अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM।

वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड अब वक्त हो चुका है बॉलीवुड की कुछ खबरें जान लेने का। जी हाँ, नीट परीक्षा पर सेलेब्स का सपोर्ट बहुत लेट हो रहा है, लेकिन हो रहा है ना। भारत में चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में बॉलीवुड के बड़े सितारे उतर गए हैं, एंड आलिया भट्ट ने छात्रों की हिम्मत की तारीफ करते हुए एक इमोशनल नोट जो है वो शेयर करा है। बहुत सारे सुपरस्टार स्टार्स जो चुप्पी बनाए रखे थे अब तक, वो धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आम जनता है ना, सवाल पूछे जा रही है उनसे कि क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हो यूथ को, एंड यूथ ने अगर सपोर्ट नहीं किया तो आगे क्या होगा, ये हम सभी को पता है। दैट्स व्हाई आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन हाँ, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, एंड धीरे धीरे ऐसे नाम अभी आगे आते हुए नज़र आएंगे। सो एन्जॉय करते हैं अगला गाना, एंड मनाते हैं इस शाम को और भी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM, रेडियो नायरा, पक्का देसी, पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारापर निर्वाणा नाइट्स एंड 7 से 10 हमारा ये शो चलता है। हमने रुख कर दिया है बॉलीवुड की कुछ खबरों की तरफ। तो खबर के अनुसार बॉलीवुड की खबर के अनुसार करीना कपूर का बयान, करीना कपूर खान ने भी छात्रों के हक में आवाज उठाते हुए कहा है कि युवाओं को इस जायज मांग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि यूथ जो है वो सही है एंड जो भी वो कर रहे हैं अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका सपोर्ट बॉलीवुड की हीरोइन बेबो ने किया है। एंड यू नो बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कुछ यंग पॉलिटिशियंस भी इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। एंड ऐसा है कि आंदोलन चल रहा है, सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं। आपके क्या कहना है इस मामले के बारे में, आप मुझे बता सकते हैं। एंड आपके जो भी ओपिनियन है वो जेन्युइनली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14

सुन रहे हैं रेडियो 90.1 नाइट्स एंड अमिताभ बच्चन का हेल्थ अपडेट। महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ताज़ा व्लॉग में सर्जरी आईसीयू के मुश्किल वक्त का जिक्र कर फैंस को थोड़ा चिंतित कर दिया है, लेकिन अब वो लाइक घर लौट आए हैं ऐसा पता चल रहा है। उनकी तबीयत आई डोंट नो एग्जैक्टली अपडेट क्या आई है, लेकिन इतनी खबर तो पक्की है कि वो अपने घर लौट चुके हैं। एंड इस एज में इस हिम्मत को ये अमिताभ बच्चन ही कर सकते हैं। एंड थिंग इज दैट कि जो भी जितना भी काम भी ने किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। यू नो बीबी के बारे में कहना इतना ये करना है, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, बट जो भी उनकी एक्टिव चीज़ें हैं वो करते रहते हैं। ये एज में भी काम करना, एक्टिंग करना एंड एक्टिव रहना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एंड होप सो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी।

0: every restaurant becomes an experience. But Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

लाइट्स, एंजॉय किया आपने, गाना गाना था वाकई में काफ़ी बेहतरीन। आमिर खान का बड़ा रीयूनियन, यस। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर एक बार फिर फिल्म ललकारा के लिए साथ आ रहे हैं, जो बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फिल्म रहने वाली है। एंड अक्टूबर से ये फिल्म जो है ये फ्लोर पर आएगी, मतलब फ्लोर पर जाएगी, आई मीन टू से। एंड बहुत बिग कुछ तो भी होने वाला है, क्योंकि आमिर खान का जो कमबैक है वो देखने लायक रहेगा। वैसे भी आमिर खान का यही है कि ज़्यादा फिल्में करते नहीं है, साल में एक आध फिल्म निकालते हैं, कभी कभी दो साल हो जाते हैं, कभी कभी तीन साल हो जाते हैं, लेकिन फिल्म के लिए जो भी किरदार उनको निभाना होता है वो पूरी तरह से अभ्यासपूर्वक किया जाता है, एंड बाद में ही वो स्क्रीन पे आते हैं। फिर उनका लुक हो, उनकी फिजिक हो, या फिर उनकी एक्टिंग हो, हर चीज़ में आपको कुछ अलग देखने मिलता है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी।

आप सुन रहे हैं रेडियो नैरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड 7 से 10 ये हमारा शो चलता है। थालापति विजय की आखिरी फिल्म, जी हाँ, तमिल स्टार और राजनेता थालापति विजय की बहुप्रतीक्षित आखिरी फिल्म जननायकन आज सिनेमा घरों में जो है वो रिलीज हो गई है। एंड थालापति विजय की मूवी है यार, उसके बारे में क्या बताऊँ मैं, मूवी कैसे रहने वाली है ये तो कोई भी नहीं बता सकता। लाइक सबको पता है यार, ऑफ कोर्स की मूवी जो है ये बहुत अच्छी रहने वाली है। एंड थालापति विजय इज लाइक मतलब नाम सुनते ही जो एक्शन, जो डांस एंड जो एक्टिंग है वो मैं क्या बताऊँ, सभी चीज़ों का जो क्या बोलते हैं, सब चीज़ जब साथ में आती है, सब टैलेंट साथ में आता है तो वो विजय थालापति कहलाता है, ऐसा मुझे लगता है। चाहे फिर कुछ भी हो जाए, थालापति इज थालापति। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी

0: वरन नाइट्स एंड सचिन दसी हमारा शो चलता है। शो वाकई में काफ़ी बेहतरीन बना रहे हैं मेरे लिसनर्स, तो थैंक यू सो मच आप सभी को एक बार। एंड बाकी तो यार सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अभी मौसम ऐसा है कि क्या बताऊँ मैं आपको, भीड़ कम हो रही है, टिमटिमाते लाइट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड विशाल शिखर जिसके बारे में, ये म्यूजिकल जोड़ी के बारे में हम बात कर रहे थे, उनका जो कंसर्ट रहा है वो इतना बेहतरीन रहा है। एंड जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है मैं क्या ही बताऊँ। पूरा हमारा आरटीपी एंड ट्रायंगल धरम रैली सब लोग मतलब झूम इस कदर रहे थे कि क्या ही, लाइक विशाल शेखर इज लाइक फुल टू एनर्जेटिक कॉन्सर्ट देखने मिला है। एंड बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये फिर से होना चाहिए। सो आई विल लेट यू नो कि अगर ऐसा और फ्यूचर में कुछ होता है, डेफिनेटली होते तो रहेगा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का दिखे।

आपनी एक गाना आप सुन रहे हैं रेडियो दायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड म्यूजिक लवर्स के लिए। और एक बड़ी खबर मैं लेकर आ रहा हूँ संगीत के जादूगर यस एआर रहमान के नॉर्थ अमेरिका वंडरमेंट टूर का रैली स्टॉपेज होने वाला है, जिसकी जानकारी रेडियो नायरा पर आपको सुनने मिलेंगी। एंड डेफिनेटली मैं अपडेट दिया करूंगा आप सभी को, क्योंकि ए आर रहमान एंड म्यूजिक ये दोनों यू नो लाइक यार एक अलग ही है ना, बहुत अच्छा है। तो मैं यही कह रहा था कि 7 से 10 का ये टाइम मेरे प्यारे लिसनर्स के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। एंड कैसे आप सब लोग, यही वो वक्त होता है जब फैमिली के साथ बैठकर डिनर किया जाता है। अगर सारी फैमिली एक साथ बैठकर आप डिनर कर रहे हो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो यस कल मिलूंगा आप सभी को इसी शो पर इसी टाइमिंग पर। तब तक के लिए आपका अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

0: रॉकेट गाय फुल जड़ी से तूने भरे ले पॉकेट। अरे बारा बन मेरे जाई सबन, ये ले नाना का बॉम जाके उड़ा दे घर।
1: Oh bhai phu, phu gadi phu, you like me and I like you too. Oh bhai phu, phu gadi phu, you like me.

0: Papa nih main menjadi.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

0: रेडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

Good morning, good morning, good morning. Yes, the weekend is already here, and yeah, we're going to be enjoying it. वैसे आपने tune in किया है Naira Rally Drum पक्का DC पक्का local on 99.9 FM HD4 101.9 FM 4090 AM. मैं हूँ आयुषी and आप सभी का स्वागत है जरा मुस्कुराओ में. वीकेंड की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है आई मीन आज से अभी से एंड येस लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अक्रॉस द ट्राइंगल वेदर वाइज भी लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अक्रॉस द ट्राइंगल तो उसके बारे में भी बात करेंगे बाकी जो भी सारी वीकेंड एक्टिविटीज चल रही है जो भी सारे इवेंट्स प्लान किए गए हैं वी हैव द रैली कॉमिक कॉन हैपनिंग तो उसके बारे में भी हम गैलेक्सी कॉन जो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे बिकॉज वो कल से ऑलरेडी शुरू हो चुका है एंड पहला दिन जो था इट वॉज रियली रियली गुड कॉस्प्लेयर्स की तो मतलब अभी फिलहाल तो मौज है वो ऑलरेडी बहुत खुश है एंड या अब कल से जो ये रैली कन्वेंशन सेंटर में गैलेक्सी कॉन किक ऑफ हो चुका है वहां पे कुछ बहुत ही जाने माने सेलिब्रिटीज आने वाले हैं एंड दे आर गोना बी सेलिब्रेटिंग दीज फोर डेज ऑफ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग वहां पे पैनल्स भी रहेंगे सब कुछ रहेगा एंड दे आर ऑल्सो गोना बी हैविंग उनका फ्लैगशिप इवेंट एक्सपांडेड टू सेवरल सिटीज अक्रॉस द कंट्री इंक्लूडिंग फिलाडेल्फिया क्लीवलैंड ओरलैंडो ओक्लाहोमा सिटी सवाना एंड शिकागो तो वो भी वो एक्सपांड करने वाले ऐसे में पता चला है सो या देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपनिंग एज वेल सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आपके फेवरेट बॉलीवुड के गाने जो है वो भी सुनेंगे इसलिए आप ही कहीं मत जाइए मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ मैं तो अभी आई हूँ सुनते रहिए नैरा रैली ड्रम

0: लिविंग मीट्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 9193883.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पकड़ी सी पकलोकल महुआई एंड आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अक्रॉस द ट्राइंगल, बट क्या हम वो एकदम टू इट्स फुल पोटेंशियल एंजॉय कर सकते हैं? आई मीन वेदर वाइज अगर बात करें तो शायद से नहीं, स्पेशली आउटडोर एक्टिविटीज तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज देर इज अ फ्लड वॉच इन इफेक्ट फॉर लिटरली मोस्ट ऑफ द स्टेट आज दिन भर, एंड आपको थोड़ा सा उसके तरफ ध्यान देना है. सो या वी हैव हाइज एट अराउंड 80 डिग्रीज एंड वी आर एक्सपेक्टिंग लिटरली पॉन्डिंग ऑन रोड्स, एंड आज दिन भर बारिश रहेगी, लिटरली स्कैटर्ड शावर्स रहेंगे, एंड दैट इज वाई आज ये जो मीडियम रिस्क है फॉर फ्लडिंग उसके चलते लोगों को इत्तला किया गया है कि प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए. नेवर नेवर नेवर एवर ड्राइव इन टू फ्लड वाटर्स. द की थिंग टू रिमेम्बर इज कि थोड़ा सा भी पानी अगर आपको सामने नजर आ रहा है किसी रास्ते से जाते हुए तो जस्ट टर्न अराउंड. दैट इज द स्लोगन की टर्न अराउंड डोंट ड्राउन, एंड इट इज अ स्लोगन स्टार्टेड बाय द नेशनल वेदर सर्विस, एंड इट बेसिकली रिमाइंड्स अस टू नेवर अटेम्प्ट टू ड्राइव थ्रू स्टैंडिंग वाटर, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो कितना डीप है, हमें नहीं पता कि वहां पे अंदर कुछ है नहीं है, हम अटक गए तो कैसे होगा. सो जस्ट टेक अ डिफरेंट राउट. इट इज ऑब्वियसली हाईली एनकरेज्ड, एंड या हमें ड्रॉट के रिलेटेड भी कुछ अपडेट्स मिले हैं कि अरे बारिश आ तो रही है बट क्या उसका ड्रॉट के ऊपर असर हो रहा है या नहीं, तो उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे. देयर आर लॉट ऑफ अपडेट्स. तो या दिस इज हाउ द वेदर इज लुकिंग लाइक एटलीस्ट आज. प्लीज ध्यान से गाड़ी चलाइए, ड्राइव सेफ, स्टे एकदम सेफ एंड स्टे लाइक ड्राइव रिस्पॉन्सिबली एज वेल. सुन रहे हैं नायरा राली ड्रम महुआई के साथ.

जी वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पकड़ी सी पका लोकल. मैं हूं आयुषी. आप सुन रहे हैं सरा मुस्कुराओ. सिटी ऑफ गोल्ड्सबोरो ने कहा है कि उनके यहाँ का जो डिमोलिशन वर्क है वो उन्होंने अभी फिलहाल के लिए रोक दिया है एट टू डिफरेंट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आफ्टर डिस्कवरिंग कि ये जो प्रोजेक्ट्स है they moved forward without following required legal procedures including asbestos regulations designed to protect public health. And ab isse ek aur sawal uthta hai ki jab ye building actually ban rahi thi tab ye rules kyu nahi follow kiye gaye, tab ye jo matlab basically building bana rahe the wo kahan the. So now city officials ne kaha hai that they recently learned ki ye jo residential demolitions hai they had been initiated without complying with requirements in the city's code of ordinances and North Carolina law. And uske baad city ne kaha ki it immediately stopped all work, secured the affected sites and hired a qualified contractor to clean up, remediate and then properly dispose of hazardous materials jo abhi tak wahan pe pade hue the, and that was in accordance with state and federal regulations. So ek internal review basically found what the city described as contracting and policy issues as well as concerns about the demolition vendor's qualifications. Officials ne kaha कि ये जो इश्यूज थे दे बेसिकली रिजल्टेड इन वायलेशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल्स रिलेटेड स्पेशली टू एस्बेस्टोस एंड दैट इज व्हाई दे वर लाइक कि ये जो डिमोलिशन हो रहा है हम उसको आगे नहीं जाने दे सकते. सो नाउ दे आर वर्किंग विद स्टेट रेगुलेटर्स एंड एनवायरमेंटल प्रोफेशनल्स टू सिक्योर एंड कंटेन द साइट्स इन अकॉर्डेंस विद स्टेट एनवायरमेंटल सेफ्टी गाइडलाइंस एंड उसके बाद ही ये डिमोलिशन आगे बढ़ेगा. तब तक के लिए हमें पता नहीं कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है बट दिस इज व्हाट द लेटेस्ट अपडेट इज. स्टे ट्यून्ड.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

हेलो जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल. मैं हूं आयुषी और आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. कल कैरी के जो लीडर्स हैं, दे वर होल्डिंग द फर्स्ट रेगुलर मीटिंग सिंस अ स्टेट ऑडिट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द टाउन्स टैक्स डॉलर स्पेंडिंग. एंड ये जो मीटिंग हुई एट कैरी टाउन हॉल, इट वॉज अमंग द फर्स्ट चांसेस द पब्लिक वॉज गन हैव टू स्पीक डिरेक्टली टू कैरी के लीडर्स. जब से ऑडिट का रिलीज हुआ है तब से सम रेसिडेंट्स कॉल फॉर अ रिकॉल इलेक्शन टू रिप्लेस लीडर्स. देन दे वर लाइक कि यू नो बहुत सारे ऐसे लीडर्स है हु दे बिलीव्ड हैड इग्नोर्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस कैरीज फाइनेंशियल ट्रबल्स अर्लियर. उन्होंने तभी ध्यान देना चाहिए था, तभी अगर ध्यान देते तो ये सब नहीं होता. एंड बहुत सारे फिर और भी लोगों ने अपने अपने जो मुद्दे हैं वो बेसिकली यहाँ पे रखे थे. सो कल की ये जो बड़ी सी मीटिंग हुई है उसमें दे रिव्यूड फाइंडिंग्स फ्रॉम अ टाउन फंडेड रिव्यू बाय द लॉ फर्म व्हिच रिवील्ड ऑपरेशन फेलियर्स अंडर स्टीगल. एंड इन रिस्पॉन्स टू द स्टेट ऑडिट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, कैरी ऑफिशियल्स ने कहा दैट जो पिछले मैनेजर थे, ही क्रिएटेड अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी दैट लेफ्ट द फुल काउंसिल विदाउट द सेम नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ की डिसीजंस. एंड अब उसके ऊपर बेसिकली काम करने वाले हैं. मीनवाइल कैरी के जो काउंसिल मेंबर्स हैं, दे आर सेट टू कंसीडर एक एंटी रिटेलिएशन पॉलिसी एज वेल. कल उसके ऊपर बात हुई, अभी तक एज सच उसके ऊपर अपडेट नहीं आया है, बट जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बताऊंगी. बट इट वुड बेसिकली इंप्लीमेंट प्रोटेक्शंस फॉर टाउन एम्प्लॉइज हु रिपोर्ट मिसकंडक्ट इन गुड फेथ. एंड देयर लाइक कि यस, लोगों को डर लगता है बहुत बार बताने के लिए, तो अभी उनको डर नहीं लगेगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा एंड वो आराम से प्रॉपरली कंप्लेन कर सकते हैं अगर उनको कुछ भी मिसकंडक्ट नजर आता है तो. सो लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है क्या नहीं. बट या दिस इज व्हाट हैपेंड यस. Today. Stadium.

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका डीसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. कल के उनके मीटिंग में कैरी टाउन काउंसिल ने और भी मुद्दे डिस्कस किए. दे टेबल द वोट दैट वुड अलाउ द राली हाउसिंग अथॉरिटी टू बाय द एम्बरवुड एट लॉकमेर अपार्टमेंट एम्बरवुड एट लॉकमेर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स एंड देन टर्न इट इनटू अफोर्डेबल हाउसिंग. सो येस्टरडे द काउंसिल डिसाइडेड टू टेबल द वोट इनडेफिनेटली आफ्टर हियरिंग फ्रॉम रेसिडेंट्स हु स्पोक इन अपोजिशन ऑफ द प्लान. बहुत सारे रेसिडेंट्स ने बेसिकली कंसर्न्स एक्सप्रेस किए ओवर सेफ्टी एंड द इंक्रीज क्राइम इन द एरिया. तो उसके बाद उन्होंने बेसिकली अभी डिसाइड किया है कि थोड़ा सा रुक ही जाते हैं. सो मेनी काउंसिल मेंबर्स स्टेटेड दे फेल्ट लाइक देयर वाज नॉट इनफ टाइम टू रिसर्च द पार्टनरशिप विद द रैली हाउसिंग अथॉरिटी. द हाउसिंग अथॉरिटी हैज फेल्ड टू आंसर सेवरल क्वेश्चंस जो काउंसिल मेंबर्स ने उनको पूछे थे बिफोर वोटिंग, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर रिलेटेड टू रेगुलेशंस एंड फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस भी है. नाउ इट इज अनक्लियर हाउ रैली विल गवर्न द प्रॉपर्टी इन कैरी टाउन लिमिट्स, बट देयर लाइक कि अब देखते आगे क्या होता है. नाउ हियरिंग एम्ड टू एड्रेस गिविंग द हाउसिंग अथॉरिटी a tax exempt status that would allow funding for the project, and the vote to table the decision was 5-2. So they are like, if we table this it will effectively be a no vote. So filhal we are tabling this, and they basically tabled it. So yeah, that's happened yesterday. Stay tuned, main hoon Aayush aapke saath.

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषियन, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. यस्टरडे वाज थर्सडे एंड हमारी स्टेट का जो लेटेस्ट ड्रॉट रिपोर्ट है वो रिलीज किया गया. एंड गाइस, इट शोज फाइनली कि ड्रॉट कंडीशंस आर इम्प्रूविंग. सो द बिगेस्ट चेंज विद दिस लेटेस्ट अपडेट इज दैट None of our area is now under exceptional drought conditions. अब जो extreme drought था, it has also dropped from 39% to 29%. And obviously, ये सुनके अच्छा लगा है. जो exceptional drought है, it only covers 2% of the state. So basically, all of Wake County is now only in severe drought and उसके आगे नहीं है. तो येस, इट मीन्स कि कंडीशंस आर इम्प्रूविंग. ये जो बारिश हो रही है जिसके चलते हमारे यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स के वार्निंग लग रहे हैं, वो बारिश एक्चुअली मदद कर रही है एंड दैट इज अ गुड थिंग. सो द ड्रॉट मॉनिटर ओनली कंसिडर्स रेन दैट फेल बिफोर ट्यूजडे आफ्टरनून. सो कल, परसों, वेंसडे, थर्सडे एंड आज का बेसिकली उसमें काउंट नहीं हुआ, वो अगले वीक काउंट किया जाएगा. बट जो ये बारिश आने वाली है उसके चलते येस, मोर इम्प्रूवमेंट इज लाइकली विद द हैवी रेन दैट वी आर सीइंग दिस वीकेंड. एंड इट इज ऑल गुड न्यूज, बट स्टिल इट विल टेक अ लॉट ऑफ रेन टू एलिमिनेट द ड्रॉट कंप्लीटली. वी स्टिल नीड लाइक 16 इंचेस ऑफ रेन विद इन अ मंथ टू एंड हमारा ड्रॉट, ऐसा भी हमें उस रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है. एंड ऑल वी कैन होप राइट नाउ इज कि यस, उतनी बारिश आ जाए ताकि हम एटलीस्ट लाइक ड्रॉट से निकल जाए एंड हमारे यहाँ की कंडीशंस इंप्रूव हो एंड हमारे यहाँ के फार्मर्स को उसका फायदा हो. सो या, दैट इज व्हाट द लेटेस्ट रिपोर्ट इज. स्टे ट्यून्ड, मैं हूं आयुषी आपके साथ.

0: जी वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पकड़ी सी पकड़ो कल मैं आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. फीफा खत्म हो गया, एक और टूर्नामेंट कल से शुरू हो गया है एंड इट हैड अ वेरी सुंदर ओपनिंग सेरेमनी. आई एम टॉकिंग अबाउट द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स इन ग्लासगो एंड नाउ दे कैन बी मूविंग इन टू देयर सेकेंड डे आज के दिन. एंड इसमें इंडियन एथलीट्स जो है दे आर सेट टू कम्पीट अक्रॉस फाइव स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग सेवरल मेडल इवेंट्स. सो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दैट कि यस क्या मेडल लाते हैं, क्या मेडल लाते हैं. अब बिगेस्ट मेडल होप्स जो है वो आज ही हमें मिलने वाले हैं इन पैरा पावर लिफ्टिंग. वाइल्ड जिमनास्ट्स, बॉक्सर्स, स्विमर्स and lawn bowls players are going to be beginning ya fir continuing unke campaign. So gymnastics, para swimming, swimming, para lifting, para power lifting, bowls, gymnastics and uske baad boxing, aise sare alag alag sports mein hamare yahan ke jo athletes hai wo compete karne wale hai. And yeah, it is something obviously to look forward to because kali humne baat ki ki ab 2030 mein jo bhi commonwealth games hone wale hai wo india mein hone wale hai. India is going to be hosting the commonwealth games. So is saal acha impression banana to banta hi hai, already waise ban gaya hai, hamare athletes kuch kam nahi hai. But yeah, so we are super excited, all the very best to them aaj ke unke second day ke liye and we are super excited for the medals as well. Yeah, stadium.
1: Naya saal, nayi ummeedein, naye gaane, naye sapne, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर.
2: नॉर्थ कैरोलिना, द वेट इज फाइनली ओवर.
3: द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ डांस, इंडियाज लेजेंडरी प्रभु देवा इज कमिंग लाइव टू रैली. Experience an unforgettable night of spectacular dance, breathtaking performances, blockbuster music, over 100 phenomenal dancers, celebrity appearances, viral hits in Tamil, Telugu and Hindi, and non-stop entertainment.
2: Witness the

0: सेंसेशन हरिणी नीलकंठन नताशा शर्पा सोनाली बदौरिया अलेक्जेंडर नोयल एंड सानवी मेघना ऑल परफॉर्मिंग लाइव इन वन स्पेक्टेकुलर शो मार्क योर कैलेंडर्स संडे अगस्त 9th इन राली नॉर्थ कैरोलिना Bring your family, bring your friends and be part of the biggest pan-India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira. Your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आज का प्लान क्या है सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक प्योर वेजिटेरियन फ्रेश लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड वॉक एंड चिल स्पेस ह्यूज पार्किंग नो स्ट्रेस इजी एंट्री एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे तो दोस्तों को बुलाओ चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए 3611 डेविस ड्राइव मॉरिसविल कॉल करें 9842540111 रच्चा बंडा एक बार आए तो रोज आए
3: 101.9 FM 99.9 FM SD44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोकल
4: नमस्ते जी वेलकम बैक आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल मैं हूं आयुषी आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ देखिए जी अब फिर से एक बार डजन्स ऑफ अमेरिकाज ट्रेडिंग पार्टनर्स फेस न्यू टैरिफ्स लिटरली ऑफ 10% टू 12.5% लिटरली यूरोप से लेके चाइना से लेके इंडिया तक ऑन गुड्स शिप्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव अब ये जो टैरिफ्स है वो कल ही अनाउंस हुए हैं दे वेंट इन टू इफेक्ट आज सुबह से ऑलरेडी सो गुड्स फ्रॉम द 60 अफेक्टेड ट्रेडिंग पार्टनर्स मेकअप 99.4% ऑफ यूएस इम्पोर्ट्स एंड अब इन सभी चीज़ों पे टैक्सेस लगेंगे टैरिफ्स लगेंगे 10% टू 12.5% द टाइमिंग कोइंसाइड्स विद द लैप्स ऑफ अ 10% नियर ब्लैंकेट ड्यूटी जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इम्पोज की थी अर्लियर दिस ईयर विच वॉज डीम्ड अनलॉफुल बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय द वे एंड अब फिर से कल ये जो है वो लगाए गए हैं सो द यूरोपियन यूनियन क्वेश्चन द न्यू टैरिफ विथ इट्स फॉरन पॉलिसी चीफ एंड दे कॉल इट अ नेगेटिव सरप्राइज एंड रिजेक्टिंग द फोर्स्ड लेबर क्लेम्स एज अनफाउंडेड स्विट्जरलैंड ने भी ये एलिगेशंस को अपोज किया है नॉर्वे ने कहा दैट इट डज नॉट प्लान टू रिटेलिएट बाय इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन अमेरिकन गुड्स जो चल रहा है वो चलने देते हैं इन अ स्टेटमेंट यस्टरडे ब्राजील रिजेक्टेड द 12.5% टैरिफ ऑन इट्स गुड्स एंड रिइटरेटेड इट्स कॉल फॉर रेसिप्रोसिटी Reciprocity. Australia, subject to 12.5%, also voiced opposition to the new tariffs. Basically, kisi ko ye nahi chahiye. They're like, ki, what is happening? Ye tariffs aaye kahan se? Humko nahi chahiye, bhaiya. Hum isko oppose kar rahe hain. Literally reject kar rahe hain. So, yeah, ab dekhna hai kya hota hai. But they went into effect aaj subah se. But yeah, they've been rejected. So, we don't know where we are. Yeah.

हेलो हेलो, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका डीसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. अभी परसों की बात है. ऑफिशियल्स गैदर्ड एट द डाउनटाउन वाशिंगटन हेडक्वार्टर्स ऑफ द एनर्जी डिपार्टमेंट फॉर एन इवेंट मोर देन टू डेकेड्स इन द मेकिंग, एंड दैट वाज द साइनिंग ऑफ अ सिविलियन न्यूक्लियर अग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया. टू सेट्स ऑफ अमेरिकन एंड सऊदी फ्लैग्स वर प्लेस्ड ऑन स्टेज. उसके बाद टेबल पे हमने देखा कि एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट वाज सीटेड, देन देयर वाज अ लार्ज स्क्रीन उनके पीछे, एंड वहाँ पे हम देख रहे थे कि उनके सऊदी काउंटर पार्ट थे फ्रॉम रियाद. एंड आफ्टर मंथ्स ऑफ डिले दिस अरेंजमेंट वाज फाइनली साइंड. द सऊदीज हैड वन मच ऑफ द विश लिस्ट फॉर द डील, बट एज क्विकली एज इट वाज अनाउंस्ड, अब हमें ऐसे पता चल रहा है दैट इट्स गोना बी फॉलिंग अपार्ट. सो कल सुबह ट्रंप ने पोस्ट किया दैट सऊदी अरेबिया वुड हैव टू जॉइन द अब्राहम अकॉर्ड्स, एन इनिशिएटिव डेटिंग बैक टू ट्रंप्स फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन दैट लेड टू सेवरल अरब कंट्रीज नॉर्मलाइजिंग द डिप्लोमैटिक स्टैंड टूवर्ड्स इसराइल. ट्रंप ऑल्सो डिनाइड दैट द अग्रीमेंट वुड ऑल्सो अलाउ यूरेनियम एनरिचमेंट. नाउ द प्रेसिडेंट, अकॉर्डिंग टू अ सोर्स फेमिलियर विद द मैटर, वॉज ऑलरेडी एंग्री ओवर द अनवीलिंग ऑफ द डील. And राइट ने उनको बता दिया था कि ट्रंप वुड बी अनाउंसिंग, बट वो नहीं हो पाया. सो फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया, एंड उसके चलते बेसिकली अब ट्रंप ने वो अपेंड कर दिया है इन लेस देन 24 आवर्स आफ्टर इट्स साइनिंग. सो लॉट ऑफ इवेंट्स एक्चुअली हैपेंड कल वो साइनिंग जब हुआ उसके बाद से, एंड वहाँ से लेके अभी तक अभी हमें बस यही पता चला है कि ये चल रहा है फिलहाल. इट इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी. आज दिन भर में क्या होता है देखना है. सो या स्टे ट्यून्ड, मैं हूं आयुषी आपके साथ.

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition and unforgettable flavors.
2: From crispy Delhi style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat to the signature Soul Dal Bukhara.
1: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
2: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: नमस्ते जी, वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल। मैं आयुषी एंड आप सुन रहे हैं सलाम मुस्कुरा।

आजू बाजू भी भाषाएं बदल रही है, सेल्फ केयर का जो एक ओवरऑल डेफिनेशन है वो बदल गया है. पर आज का दिन इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, जस्ट लाइक मेकिंग श्योर दैट यू आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नॉट जस्ट बींग सेल्फिश एंड जस्ट लाइक प्रॉपरली टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. तो या आज नेशनल अमीलिया ईयरहार्ट डे भी है. वी आर सेलिब्रेटिंग हर हर स्पिरिट एंड जो वो हमें सिखा की गई है. आज नेशनल टेल एन ओल्ड जोक डे है. तो या देर आर सम जोक्स जो बहुत पुराने हैं, सदियों से चलते आ रहे हैं, बट फिर भी अभी सुन के अच्छा लगता है, उतनी हंसी आती है. तो आज उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ताकत देखो यार, जोक्स की ताकत देखो. तो ये आज के ओकेजन है, हैव फन विद देम. बाकी आज कल परसों क्या हो रहा है थोड़ी देर में बात करेंगे. स्टे ट्यून्ड, मैं हूं आयुषी आपके साथ.

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मंगवाई शेन आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. गैलेक्सी कॉन शुरू हो चुका है. इट इज़ अ 4-day फेस्टिवल. कल से वो शुरू हो गया है एंड वहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ जमा हो गई है सारे फैंस की, कॉस्प्लेयर्स की, कि क्या ही बताऊँ. तो आज कल और परसों तीनों दिन इसका माहौल तो चलने ही वाला है. अलग से बताने की मुझे जरूरत नहीं है. टुमारो वी हैव एनसी करेज वर्सेज यूटा रॉयल्स एट वेकमेट सॉकर पार्क. देन टुमारो वी ऑल्सो हैव बाइक्स बर्गर्स एंड ब्रूज. एंड टुमारो वी ऑल्सो हैव योगा फ्लो इन फेंटन स्क्वायर. देन संडे को वी हैव टेस्ट ऑफ सोल इन राली सिटी प्लाजा एंड देन ड्रम अंडरग्राउंड मार्केट. बच्चों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है एंड दैट इज बबल फेस्टिवल. सो इट इज हैपनिंग एट मूर स्क्वायर. देन देयर इज गोइंग टू बी स्प्लैश पैड बैश कल. देन कल कार्डिनल कार्निवल भी है. संडे को समर शिंडिक भी है. एंड या दीज आर द थिंग्स दैट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड फॉर kids especially. तो वो आराम से जाके enjoy कर सकते हैं. Then you can go and enjoy Ella Langley tomorrow. Today. Then Elmaine आज at Ritz Rally. And tomorrow you can go and enjoy Matt Mason at Ritz Rally. So yeah, these are the things that are happening today, tomorrow and the after. Have fun with them. Just like outdoor events accordingly plan कीजिए weather के साथ. And just stay safe in general. Stay tuned.

आई मीन मैं ऐसी थी कि इजंट दैट जस्ट लाइक एसी, बट लाइक ओके आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका एसी पका लोकल. मैं हूँ आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. सो अभी दुनिया के अलग अलग कोने में जो ओवरऑल हीट वेव्स चल रहे हैं उसमें एक जापानीज कंपनी ने उनके कंट्री की जो इंक्रीजिंगली हॉट समर टेम्परेचर्स है उसको एक अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया है बाय अनवीलिंग अ न्यू ह्यूमन रेफ्रिजरेटर. सो दिस इज एक दो हाइमन बॉक्स मार्केटेड एज अ ह्यूमन रेफ्रिजरेटर. इट इज रफली द साइज ऑफ अ स्टैंडर्ड जापानीज वेंडिंग मशीन एंड बेसिकली इट कैन फिट वन पर्सन इनसाइड लाइक एट अ टाइम. And the temperature inside the box is kept at 59 degrees. And ek baar jab wo aadmi andar chala jata hai, darwaza band hota hai, cold air is blasted at their head, neck, shoulders and back. So this box was developed by a refrigeration and vending machine ke manufacturer. And they are like ki these boxes can help relieve symptoms of heat exhaustion by rapidly cooling bodies. तब मैं ऐसी थी कि हाँ ठीक है, दिस इज नॉट ए सी, लाइक दिस इज गुड कि उन्होंने बेसिकली जो हमारे यहाँ पे जैसे कूलिंग स्टेशन होते हैं वैसे ये ह्यूमन रेफ्रिजरेटर्स अनवील किए हैं इधर उधर रास्तों पे. एंड इट इज बीइंग मार्केटेड फॉर प्लेसेस वेयर पीपल वर्क आउटसाइड जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स. तो अगर आप बहुत दिन भर काम करते हैं बाहर तो आप बीच में जाके यू कैन जस्ट कूल डाउन, यू कैन गेट रिड ऑफ योर हीट एग्जॉस्टन के सिम्टम्स एंड देन कम बैक. एंड नाउ दे हैव अनवील्ड दिस. एंड या बेसिकली महंगा तो है वो, बट एक बार खरीद लिया तो आप उसको रख सकते हैं बहुत दिनों तक. एंड या देर बेसिकली लाइक कि हीट स्ट्रोक के चलते जो लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं उसके पहले ही अगर आप खुद को जाके कूल डाउन कर लें इन ह्यूमन रेफ्रिजरेटर्स में तो आपको हीट एग्जॉस्टन या फिर हीट स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाएंगे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. बट आई वाज लाइक ठीक है, मतलब फ्री रखते तो बात अलग होती, बट ठीक है, स्टे ट्यून्ड.

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका डीसी पकलो कल मंगवाई शेन. आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. कल के दिन ड्यूक एनर्जी ज्वाइंड न्यू फेडरल प्लेज प्रॉमिसिंग सारे हाउस होल्ड एंड सारे बिजनेसेस विल नॉट हैव टू पे द ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद डेटा सेंटर्स. इट इज अ कमिटमेंट नॉर्थ कैरोलिना लीडर्स ने कहा दैट द यूटिलिटी मस्ट नाउ मेक लीगली एनफोर्सेबल. सो अभी हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस द एक्सपांडेड रेट पेयर प्रोटेक्शन प्लेज एज कंसर्न्स वर ग्रोइंग कि ये जो रैपिड एक्सपांशन हम देख रहे हैं ऑफ AI डेटा सेंटर्स, क्या उसके बिल हमें भरने पड़ेंगे. एंड इट कुड ड्राइव अप इलेक्ट्रिक बिल्स नेशन वाइड की लोगों को भरने पड़ेंगे. अब ड्यूक एनर्जी हमारी स्टेट का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक यूटिलिटी है. दे साइन दी वॉलेंट्री पे प्लेज अलॉन्गसाइड अदर पावर प्रोवाइडर्स, डेटा सेंटर डेवलपर्स एंड स्टेट लीडर्स. एंड उन्होंने बेसिकली प्रॉमिस किया फेडरल गवर्नमेंट को दैट इट वॉन्ट शिफ्ट द कॉस्ट ऑफ डेटा सेंटर्स ऑन टू फैमिलीज. वो खुद ही उसका बेयर करेंगे. दैन दे आर लाइक वी अग्री बट अ प्रॉमिस इन वॉशिंगटन डजेंट लोअर अ पावर बिल इन नॉर्थ कैरोलिना. सो ऐसे में हमारी जो अटर्नी जनरल है एंड गवर्नर है, दे आर कॉलिंग ऑन ड्यूक टू मेक द कमिटमेंट एनफोर्सिएबल थ्रू न्यू रेट स्ट्रक्चर्स अप्रूव्ड बाय द नॉर्थ कैरोलिना यूटिलिटीज कमीशन. सो बेसिकली हमारे यहाँ के लीडर्स आर पुशिंग ड्यूक एनर्जी टू मेक दिस फेडरल डेटा सेंटर प्लेज लीगली बाइंडिंग, ताकि वो अपना जो भी उन्होंने शब्द दिया है उससे मुकरे ना एंड आगे जाके मतलब पीछे ना हट जाए कि अरे हम तो ऐसा नहीं किया था, हमने तो ये प्रॉमिस नहीं किया था. सो अब देखना है कि ड्यूक एनर्जी क्या इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करती है. बट कल दिस बेसिकली हैपन एंड दे आर लाइक या लेट्स सी हाउ दिस गोज. सो देखते हैं. स्टे ट्यून्ड.

नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी एंड मेरे साथ आप एंजॉय कर रहे थे, जरा मुस्कुराओ. एंड नाउ इट इज टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ. एंड आज थोड़ा सा धक्का धक्का लग रहा है यार, मेरी नींद नहीं हुई अच्छे से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जाके थोड़ा सा एक नैप ले लूँ तो अच्छा लगेगा. नैप लेने से एक जो एक अलग खुशी मिलती है, मैं क्या ही बताऊँ. एंड उसके बाद जो एक अलग फ्रेशनेस आता है, मतलब सिर्फ 10 मिनट की नैप, अगर आप वो 10 मिनट से ज़्यादा कर ले तो फिर तो आप सो गए, दिन भर सो गए, आप उठेंगे नहीं फॉर श्योर. बट एग्जैक्टली अगर आप 10 मिनट की वो एक एकदम गहरी नींद वाली लूसिड ड्रीमिंग वाली नैप ले लेते हैं तो वाह वाह वाह, क्या बढ़िया रिफ्रेशिंग लगता है उठने के बाद. सो आई थिंक आई एम गोना डू दैट. आप जाइए, आपके दिन की शुरुआत हो गई है. मेरे दिन की बहुत ही पहले शुरुआत हो गई है, मुझे नींद आ रही है, तो आई माइट डू दैट. भैया ये नींद वाली एनर्जी मैं आपको नहीं देके जा रही हूँ, दैट इज जस्ट ओनली फॉर मी. आपकी नींद मुझे देके चले जाइए. एंड आपका दिन अभी शुरू हुआ है तो उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए आपके फेवरेट बॉलीवुड गानों के साथ. उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, रेडियो नायरा यूएसए, अवेलेबल ऑन बोथ ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर. वेरी इजी टू डाउनलोड, वेरी इजी टू यूज. एंड आप हमें फिर कहीं से भी कभी भी जब भी आपका मन चाहे सुन सकते हैं. सो डू दैट एंड मिलते हैं कल. तब तक के लिए सुनते रहिए नायरा राली ड्रम 99.9 FM HD4, 101.9 FM 4090 AM. बाय बाय. Take care, stay safe, and have a sundar divas ahead. Drive responsibly, stay ekdam dur pani se, and just stay safe in general. Bye, see you tomorrow.

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

CMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की, सो गेट रेडी। मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 49 AM एंड 99.9 FM HD3 तेलुगु नायरा फेम है। हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स टॉक। हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल्स आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर, ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यूज। Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week through many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। वेल मॉरिसले रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है। इंट्रोड्यूसिंग रच्चा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद अब आपके शहर में। गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए। ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्ट्रीट वाले ट्विस्ट में। ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस। दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि रच्चा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम। नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून। रच्चा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम HD4 फॉर द 90 एएम एंड 99.9 एफएम HD3 फॉर तेलुगु दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून सन टॉक। पता है बहुत थकी आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये माइंड ब्लोइंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 449 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टू सेंटर। वेल माय ट्रायंगल में फोर्थ फ्राइडे इन टाइम सेलिब्रेट होने वाला है। जॉइन अस फॉर द टीडी इज फोर्थ फ्राइडे इन जुलाई एंड गेट रेडी टू डांस एंड टैगिंग ऑन द स्क्वायर। The fabulous Jewels will be performing live at the Plaza. Slip into the rhythm and Carolina shares a smooth, easygoing partner dance on right. Here in the Southern property, match the beach music in good beat. Whether you are a seasoned dancer or just want to try, the square will be filled with the friendly faces, lively tune, and plenty of fun. Come out, grab a partner, and let the music move to you. Lal kahi jaiyega nahi, sun rahi hai Monica ke saath Radio Naira, pakka dekh.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूल्स एंड टॉक्स, उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक, हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट। 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira FM. मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक्स. विलमर ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है. एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शो केसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिडरी सप्लायर एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन. With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Praver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस्मत के लिए जरूर एंजॉय करिए. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नाइगा, पक्का देसी पक्का लोकल.

वेलकम है ऑन 101.9 FM, 99.9 FM SG4 49 AM एंड 99.9 FM SG3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून्स एंड टॉक। कहा था ना मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering, or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।

यह ऑसम गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर द 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा फेम है हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डोंट एंड टॉक वेल हमारे ट्रायंगल में ग्लोइंग रॉक चैरिटी हॉर्स शो हंटर जंपर फोर्थ डिवीजन सेलिब्रेट होने वाला है द हंटर जंपर डिवीजन ऑफ ग्लोइंग रॉक चैरिटी हॉर्सेस शो फोकसेस ऑन फीट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ विद द फोर्थ जंप ऑफ द टर्न दैट हॉर्सेस एंड राइडर्स हैव टू नेविगेट This spectacular part of the show serves as preliminaries and final that show shortly after. Participants decorate their stable for added flair. Food truck will be offered delicious treat and vendor their theme wares. मजा आने वाला है मिस मत करिए जरूर एंजॉय करिए फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा पका देसी पका लोकल

Is the Maa Ki Daal Gaane Ke Baad one more time. Welcome hai ji on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 for 90 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu. Naira se main hoon aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dudes and Talk. ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 415 डॉट विक्स ओरो स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एज नॉट विक्स ओरो स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. फील द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉट विक्स ओरो. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर्स मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Naira, pakka dekhiye, pakka local.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 449 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक।
1: बुलेवार्ड ट्रायंगल में बहुत जल्दी स्पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास स्पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of speech is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for the this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gari, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, Pakka Desi, Pakka Local.

माहौल गाना था ना, एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ड्यून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली, ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है। हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM 99.9 FM HD4 for 90 AM एंड 99.9 FM HD3 for तेलुगु। रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप, या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे, बाय बाय।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: best hits.
1: Hi, Carrie. Get ready for Dosa Bundy. Discover our signature variety dosas, including colorful carrot dosa, beetroot dosa, and more. Made with fresh natural vegetables and packed with flavor. Refresh your day with our cold-pressed juices and enjoy our delicious sandwiches made with fresh vegetables, paneer, and homemade sauces. At Dosa Bundy, every dish is carefully prepared with fresh ingredients to nourish your body and delight your taste buds. Join us every Saturday and Sunday from 8:30 a.m. to 2 p.m. and Wednesday through Friday from 5 p.m. to 10 p.m. We look forward to welcoming you
2: to 4101 NC Highway 55, Cary, North Carolina 27519.
3: Dosa Bundy, authentic flavors, inspiring journeys made with love.
4: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

देयर आर सम थिंग्स जिसको करने से पहले वी गेट अ लॉट ऑफ फियर, लगता है अपने ऊपर डाउट होता है ना कि हमसे होगा नहीं होगा. रणबीर के साथ भी ऐसा हुआ. लेट मी टेल यू हाउ. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tuned frequency, Naira. And you know, Ranbir Kapoor is currently busy introducing Ramayan to the global audience. The actor attended San Diego Comic Con on Thursday along with co-star Yash, director Nitish Tiwari, producer Namit Malhotra for a special panel on the film. On the sidelines of the event, Ranbir opened up about playing Lord Ram and admitted that he was filled with fear and self-doubt when the role first came his way. Recalling his first reaction after being offered the role, Ranbir said he wasn't sure if he was the right person to bring Lord Ram to the स्क्रीन. होता है यार, क्योंकि लॉर्ड राम भगवान है वो हमारे, एंड ही सच अ पर्सनैलिटी जो इतना आइडियल है, जो हर कुछ सही करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनके किरदार को निभाना इट्स नॉट ईजी. बट ट्रस्ट मी, आई फील दैट रणबीर इज ब्लेस्ड. यू नो, कुछ तो उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, लाइक ही इज गेटिंग दिस ब्लेसिंग फ्रॉम लॉर्ड राम ओनली. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, आई विल बी बैक.

हेल्दी लिविंग मीट्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: Here we go.

आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 41490 AM पक्का देसी पक्का लोकल

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

Ishan Khattar backs the student protest with a powerful message. This is Bollywood Blitz with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And Ishan Khattar has joined the growing list of celebrities speaking out on the student protest. Sharing a note on Instagram, the actor expressed solidarity with the movement, called for voices to be heard, and said he is a student before a professional while praising the resilience of the country's youth. Actually, yaar, jo youth kar rahi hai, wo bahut zyada courageous hai. Unko apni future ke liye apna jo take hai, wo clear hai. बट आई थिंक उसमें जो चीज़ें हो रही हैं, पॉलिटिक्स चल रहा है, वो अच्छा नहीं है. आई होप कि ये प्योरली यूथ और उनके एजुकेशन, उनके बेटर एजुकेशन के लिए ही हो, बाकी सारी चीज़ें जो हाईजैक्ट होकर आई हैं वो ना हो. वेल, इन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शो. अगली बार आपसे मिलूं. टिल देन टेक केयर ऑफ योर लवली सेल्फ. मेरी बात सुनिए. अमेजिंग शोज एंड सॉन्ग्स ओनली ऑन नायरा.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111।

0: रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD 449 AM पक्का देसी पक्का लोकल.
1: वेलकम बैक. So I hope you guys enjoyed the songs as much as I was working to prepare for this jugaad topic. So different jugaads hote hain. India mein hum bahut jugaad karte hain. Aapne koi funny jugaad kiya ho, then please feel free to call me and also we can share that with our listeners. So kisi na kisi ko koi na koi help zarur mil jayegi. Do not forget 919-998-595. Hum baat kar rahe hain jugaad ki only on... जुगाड़ बोल के बहुत अजीब सा लग रहा है. ओनली ऑन रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 एंड 101.9 FM 1490 AM. मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट. या थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है फ्रॉम बॉलीवुड एंड स्टफ. सोचा बॉलीवुड में काफ़ी कुछ चल रहा है अभी, थोड़ा सा हम अपने यू नो आसपास देखूँ और यू नो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आई कैन ब्रिंग टू यू गाइस एट होम. सो थोड़ा सा फनी भी होगा, शायद थोड़ी सी हेल्प भी मिल जाए. लेट्स सी. सो पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी बैटरी बोरोइंग जुगाड़. यू नो इन इंडिया बैटरीज डू नॉट डाई, दे गेट ट्रांसफर्ड. कैसे? सो टीवी रिमोट से लेकर एसी रिमोट की बैटरीज वॉल की क्लॉक में एंड गॉड नोज वेयर. सो हर एक घर में एवरीवन हैज वन रिमोट दैट इज बेसिकली अ रिमोट डोनर, अ ब्लड डोनर सो टू स्पीक. सो आपने कभी किसी रिमोट में इन योर हाउस यू नो विच रिमोट इज़ योर बैटरी लेस एंड यू आर थिंकिंग ऑलमोस्ट कि अच्छा चेंज करूँ, नहीं लेकर आऊँ या इधर की उधर कर दूँ. और एक और चीज़ जो हमने बहुत बार करी है, आई एम श्योर दैट रिमोट जो बैटरीज डेड होती हैं उनको निकाल देते हैं. फिर आई डो नॉट नो उनको निकालते हैं नहीं, बट आई नो दैट आई रिमेंबर कि रिमोट को लेकर थोड़ा सा साफ करके शर्ट से या कुछ एंड देन यू जस्ट रब देम बाय द शर्ट. बट थोड़ा सा टैप भी करते थे लाइक हाथ पे या कुछ यू नो एक दो बारी टैप भी करते थे दैट अच्छा चल ले भाई चल ले, शायद चल पड़े. एंड समटाइम्स इट्स फनी बट चल पड़ता था ऐसे ही टैप करके कि अच्छा मे बी द juice in the batteries was very very low and it just kind of triggered something. So that's why we say that you know we have violated physics so much. So it used to just work for another maybe 5-6 hours, 1 week, 1 day or something like that. So thoda sa we used to just delay ki aaj nahi kal jayenge batteries lene and change ho jayega. So that was one of the jugaads that I remember. But if you remember anything that you have done and that probably can bring some insight for others, that'll be great. Again, do not forget to call me. I'm your friend and host here, 919-999-8595. Don't forget to call me. Let's continue listening to these numbers and do not go anywhere. We have a few more insights with you on this jugaad topic. All right. I'll be right back.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलाइना।
1: नॉर्थ कैरोलाइना, द वेट इज फाइनली ओवर।
2: द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ डांस, इंडियाज लेजेंडरी प्रभु देवा इज कमिंग लाइव टू रैली। Experience an unforgettable night of spectacular dance, breathtaking performances, blockbuster music, over 100 phenomenal dancers, celebrity appearances, viral hits in Tamil, Telugu and Hindi, and non-stop entertainment.
3: Witness the phenomenon, the passion and the

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: पक्का देसी पक्का लोकल एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति और आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 एंड 101.9 FM 1490 AM। इंटरेस्टिंग टॉपिक है जुगाड़। हम इंडियंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ का जुगाड़ कर ही लेते हैं, किसी भी सिचुएशन में हो। अभी आप ये देख लो, आई थिंक एक कपिल शर्मा शो में भी कपिल ने बोला था दिस पर्टिकुलर वन विच वॉज रियली फनी, दैट एवरी इंडियन हैज़ डन दिस यू नो एक्सपेरिमेंट, कि फ्रिज खोलेंगे, धीरे से बंद करेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक लाइट जाती है और लाइट कहाँ पर बंद होती है। सो दैट वॉज ग्रोइंग अप वॉज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि ये कैसे लाइट कैसे बंद हो जाती है फ्रिज की। एंड टॉकिंग अबाउट रेफ्रिजरेटर, सो मॉम से ग्रोइंग अप ये भी सुना होगा फ्रिज का डोर बंद कर दो, एसी नहीं है वो, स्पेशली गर्मियों में व्हेन यू नो लाइट है, थैंक गॉड लाइट नहीं गई। एंड फॉर दोज हु आर बॉर्न हियर, दैट बेसिकली मीन्स द पावर इज देयर, द पावर इज नॉट रियली गॉन इन द सेंस द पावर इज नॉट आउट। सो लाइट नहीं, जब लाइट होती थी फ्रिज का डोर खोल कर बस खड़े हो जाओ, और जब नहीं भी होती थी तब भी थोड़ा बहुत तो ठंडी मिलती थी ना, तो थोड़ा सा खोल के खड़े हो जाते हैं। एंड डांट पड़ती थी कि दरवाज़ा बंद करो फ्रिज का, ये क्या बकवास है, एंड डोंट स्टैंड देयर, ठंडी हवा निकल जाएगी, खाना ख़राब हो जाएगा, बहुत कुछ, बहुत डांट पड़ती थी उस टाइम पर। एनी वे, फ्रिज इज़ द ओनली थिंग दैट यू नो, बहुत पहले जब फ्रिज नहीं होती थी दैन देर वॉज अ केडेंस दैट आज जो खाना बना है आज ही खाओ, उसी टाइम खाओ, दोपहर का जो खाना बना है उसी टाइम खा कर ख़त्म करो, उतना ही खाना बनता था जो खा के ख़त्म करो। बट जैसे फ्रिज आया लाइफ में, हमें ये पता चला, वी लर्नड दैट खाने का लेफ्ट ओवर भी कुछ होता है। आई डो नॉट रिमेंबर कि इंडिया में जब रेस्टोरेंट्स में हम जाते थे, आई डो नॉट रिमेंबर सीरियसली दैट आई हैव एवर रिक्वेस्टेड दैट प्लीज़ लेफ्ट ओवर हम घर ले जाएंगे। आई हैव लिटरली लर्न दैट वन थिंग हेयर दैट मेहनत की कमाई है, बहुत मुश्किल से कमाया है, एंड घर ले जाएंगे प्लीज़। एनी वे, सो घर आके उसको बस वहीं वापस हमारे दोस्त फ्रिज में रख देंगे और देखते रहेंगे कि लाइट कब बंद होती है। सो एनी वे, नॉट रियली अ जुगाड़, बट वॉज मोर लाइक एन एक्सपेरिमेंट दैट वी ऑलवेज डिड, एंड हमेशा वहाँ से ठंडी हवा आती है। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रिमेंबर एंड आई थॉट आई विल जस्ट शेयर विद यू। एनीवे, सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी एंड एक्सक्यूज मी एंड लिसन टू दीज ब्यूटीफुल नंबर्स दैट आई हैव फॉर यू गाइस। स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल टॉक अ लिटिल बिट मोर ऑन द जुगाड़।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Naira 101.9 FM Rale Dharam. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi. 99.9 Naira mein kho jao
1: Pakka Desi. Hey guys, welcome back. मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति और आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 एंड 101.9 FM 1490 AM. Go, go, go, Govinda. So, Prabhu Deva, do not forget that it's going to be on August 9th. अपनी टिकट्स ले लेना, राली में आ रहे हैं. And I'm sure that he's going to entertain because he's the legend. So, all languages, not just Hindi. So, everyone is welcome to buy the tickets. Do not forget. And what else? हम बात कर रहे थे जुगाड़ की. थोड़े से टिप्स की बात करते हैं. जुगाड़ की बात में करेंगे. सो क्लासिक इंडियन पेरेंट्स के जो जुगाड़ थे जो यू नो वी हैव इनहेरिटेड एज किड्स एट दैट टाइम एज किड्स बोला नॉट एज एडल्ट्स. सो व्हाई डू यू वांट टू बाय अ बुकमार्क? इतने पैसे वेस्ट करते हो. यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल और सम अदर पेपर एज अ बुकमार्क. और इतना पढ़ाई क्यों करनी है? स्कूल की किताबें पढ़ो, फालतू के नॉवेल्स क्यों पढ़ते हो? और फनल की क्या जरूरत है? जस्ट टेक अ न्यूज़पेपर, रोल इट एंड देन यूज इट लाइक अ फनल इफ़ यू हैव टू यूज. एंड कीप एवरी प्लास्टिक कंटेनर दैट यू एवर गेट बिकॉज यू नेवर नो. हमने खूब सारे, आई थिंक दिस इज एवरी हाउस होल्ड थिंग, इवन मेरे घर पर भी है. बट एवरी टाइम वी ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड प्लास्टिक कंटेनर्स में आता है तो हम उसको धो के कुछ कुछ को कि इतने हो गए हैं, इतना काफ़ी है फॉर एनी पार्टीज के बाद लेफ्ट ओवर्स के लिए डालने के लिए. वी ऑलवेज कीप दोज प्लास्टिक कंटेनर्स एट होम. वेल टेक्निकली इट इज़ नॉट गुड बिकॉज प्लास्टिक्स बैड आइडिया, बट करते हैं हम, अभी भी कर रहे हैं. और कुछ ऑफिस जुगाड़ कैसे होते हैं, जैसे वेल दिस इज़ अ वेरी बैड वन, कॉफी स्टरर. Do not ever do that. I'm not even gonna name this, but there are a few things that can be used as coffee stirrer, and one comes out of direct from the toolbox, and which is a very bad idea. I won't even name it. Then it says also that binder clips. It holds your phone while you are on a video call. That's again a bad idea for some people who are super sensitive about their phone and never use a phone cover. I think it's a bad idea. But anyway, this is a jugaad that, you know, some people do use. And then one charging cable at office. It belongs to the entire department. Like if you are literally sitting 4 or 5 cubes, ikatthe baithe hain, friends hain and stuff. Yaar, cable diyo, charger diyo. बिकॉज मैं तो लाना भूल गया, या मेरे पास है नहीं, या मैंने किसी और को दिया, या मेरा बॉस ले गया. सो एनी वे दोज आर द डिफरेंट जुगाड्स एंड थिंग्स दैट हैपन एट वर्क एंड एट होम. सो दैट वॉज समथिंग आई वॉन्टेड टू शेयर. एनी वे विल ब्रिंग अप मोर ऑफ दोज एंड अंटिल देन लेट्स लिसन टू सम सॉन्ग्स. एंड आई हैव नो आइडिया वट इज़ हैपनिंग विद माई लिस्ट, बट लेट मी ट्राई दिस. इफ दिस वन वर्क, इफ नॉट देन आई हैव टू चेंज माई प्ले लिस्ट. स्टे ट्यून्ड, नॉट गो एनीवेयर.

0: रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
1: वेलकम बैक एवरीवन। हम बात कर रहे हैं, पिछले एक घंटे से खूब सारी बातें करी एंड यू गाइज हैव मिस्ड अ लिटिल बिट दोज हु आर जस्ट जॉइनिंग, बट एनी हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जुगाड़ ओनली ऑन रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 एंड 101.9 FM 1490 AM। ओह, एक सांस में बोल दिया। एनीवन, आप इतने सारे जुगाड़ हमने बातें करी हैं, यू गाइज हैव एनी थॉट्स, एनीथिंग दैट यू गाइज हैव एक्सपेरिमेंटेड बाय योरसेल्फ, या कुछ याद आता है इन योर मेमोरीज के आपने कुछ जुगाड़ किया हो, डू गिव अस अ कॉल ऑन 919-999-8595। यू नेवर नो, किसी की हेल्प हो जाए और इफ नथिंग एल्स इज जस्ट गोना बी फन। द नेक्स्ट वन आई जस्ट फाउंड इज दैट, यू नो, डैड की जो यूनिवर्सल जुगाड़ होती थी, so every Indian dad has a drawer which is full of random screws. कुछ पता नहीं है कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगेगा, लेकिन मेरे पास सारे स्क्रूज हैं, स्क्रू ड्राइवर हो या ना हो, लेकिन स्क्रूज मेरे पास सारे हैं। एंड देन अगर कोई anything that breaks at home, any furniture or anything, then देख ले बेटा ये वाला स्क्रू लगेगा या ये लग जाएगा, ये थोड़ा सिमिलर है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे तो चलता है, तू देख ले। एंड देन ई यूज टू ऑलवेज हैव 3 डिफरेंट साइजेस ऑफ इलेक्ट्रिक टेप्स, क्या पता कौन सी काम आ जाए, एंड ऑलवेज अ प्लास्टिक बैग फुल ऑफ ओल्ड वायर्स। अब दिस इज फनी बिकॉज एक प्लास्टिक बैग हम आजकल रखते हैं दैट इज फुल ऑफ प्लास्टिक बैग्स, टू स्टोर अ प्लास्टिक बैग्स वी हैव अ प्लास्टिक बैग। वेल, एंड डैड ऑलवेज हैड द कॉन्फिडेंस दैट नथिंग इज बियॉन्ड रिपेयर, सो यू आर ऑल गुड, यू नो, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वी आर गोना जस्ट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। Anyhow, so those were the jugaads that dad used to always think. Mom ke bhi jugaads hain because every time mom used to say that, you know, every plastic container can get reused, don't worry about it. And kuch jo bhi gifts aate the, wo gift bags rakh lo, you know, that we can recycle those. Ki just make sure that jo gift bag kisi ne ek team A ne diya, family A ne diya, वो ही वापस किसी ओकेशन पे उसको वापस मत कर देना, बिकॉज सम पीपल दे रिमेंबर, ट्रस्ट मी, समटाइम्स जस्ट मेक श्योर कि किसी ने नाम ना लिखा हो, यू नो, कॉर्नर में कहीं पे, यू नो, सम इनिशियल्स, बिकॉज उनको पता चल जाता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू रिसाइकल दोज थिंग्स। एंड आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव एवर यूज्ड, लाइक होटल जाते थे, I do not know if you're still doing, but some of us still do. I know that Sarah Ali Khan does it because she shared at Kapil Sharma show that every time she goes to the hotels, she brings those little shampoos and conditioners and stuff. And sometimes she used to just, you know, get the towels also from there. I mean, I've done that growing up. Like, abhi itna kuch khas nahi unless it's really, really different from what we have ever used. So that is another things that people do all the time. More like a jugaad ki, achha, theek hai, ghar pe nahi hai, hotel mein achha hai, to le jaate hain. So big deal. So people do that. So that is fun. That is more like a common man life, right? Anyway, so those are the fun tips or jugaads that I wanted to share with you. Anyway, coming up right now, next number of songs, and do not go anywhere, only on Radio Naira.

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: वेलकम बैक एवरीवन। आप सुन रहे हैं मुझे आपकी दोस्त और होस्ट ज्योति को ऑन रेडियो नारा 99.9 FM HD4 एंड 101.9 FM 1490 AM। हम बात कर रहे हैं इंडियन जुगाड्स की। सो इंडियन वेडिंग्स में क्या जुगाड्स होते हैं? आई थिंक इंडियन वेडिंग्स आर द ओलंपिक्स ऑफ जुगाड्स। अब देख लो, इफ देयर इज अ 6-seater टेबल, मैजिकली इट बिकम्स अ 10-seater। बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा आगे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। एंड दिस यूज टू हैपन इन द बसेज ऑल्सो इन इंडिया। आई डोंट नो इफ इट स्टिल हैपन्स। मेरे को तो बहुत टाइम हो गया इंडिया गए हुए, लेकिन मेरे टाइम पे आई नो दैट थोड़ा सा आगे हो जाओ, एडजस्ट कर लो। बेचारे कब तक खड़े रहेंगे? बेटा आप क्यों बैठे हो? आप तो उठ जाओ, आप तो जवान हो, इनको बैठने दो। बहुत सारे जुगाड़ ऐसे होते थे। Oh my God, it just brings me down to the memory lane. Anyway, coming back to the wedding. If there are extra guests, if wedding or parties or anything, plastic chairs kahin na kahin se to appear ho jate the magically. And food jugaad. So, shaadiyon mein bolte the ki, let's just eat before the barat comes. The food will be less crowded. The food stalls basically. So, kuch log pehle hi khana kha lete the. Aur wohi wapis aate the baad mein khana khane, barat ke baad phir se. एंड देन रिजर्व कैसे करते थे पूरा टेबल? एक हैंडकरचीफ, एक यू नो हैंडकरचीफ, आई डू नॉट नो व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ दैट, एक हैंडकरचीफ रखते थे टेबल पे टू जस्ट रिजर्व द इंटायर टेबल। नहीं नहीं ये तो हमारा है। ऑब्वियसली इंडिया में गलती से भी आप अपना पर्स नहीं रख सकते वहाँ पे, स्पेशली इफ़ यू हैव समथिंग वैल्यूएबल इन साइड दैट, दैट्स अ वेरी बैड आइडिया। बट हैंडकरचीफ को मुझे कोई बात नहीं। एंड डिजर्ट, या बिकॉज एवरी वन नोज गुलाब जामुन बहुत जल्दी डिजर्ट हो जाता, डिजर्ट बोल रही हूँ, डिसअपेयर हो जाते थे। इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, डिजर्ट डिसअपेयर। सो इसलिए लोग डिजर्ट पहले खा लेते थे। एनी वे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, रियली मेक्स मी थिंक कि कैसे होता था ना इंडिया में शादियों के टाइम पे। और सेफ्टी पिंस, सेफ्टी पिंस हर चीज़ में हेल्प हो जाती थी। जो गार्ड जैसे हमने पहले बात करी, टू होल्ड टुगेदर द दुपट्टाज, साड़ीज, लहंगाज, एंड समटाइम्स द इंटायर आउटफिट इज़ फुल ऑफ सेफ्टी पिंस। आई स्टिल रिमेंबर मेरी शादी पे आई हैड वेरी शॉर्ट हेयर एट दैट टाइम, एंड बिकॉज दे हैड टू पुट सम फेक बन और समथिंग, बिकॉज इट वॉज अ गुरुद्वारा वेडिंग। सो आई थिंक आफ्टर द वेडिंग जब मैंने वो सारे पिंस निकाले, यू नो, ओ माई गॉड, I literally was counting, it was 95 hairpins in my head. I'm like, oh my God. Thank God I am alive still. Anyway, bahut sare jugad hote hain wedding time pe. So it's very interesting and just, it's just fun to talk about those things. I'm sure that it has triggered some of your memories too. Just keep listening to Radio Naira. We'll talk a little bit more on different topics. But right now, let's just listen to some numbers and don't go anywhere.

आप सुन रहे हैं रेडियो नाना 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come, see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 919-388-3888.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना